0: Layan je Bollywood Ashley FM.
1: ये गाना मत गा।
2: गाने दीजिए ना। गाओ बेटे, यही गाना गाओ।